जावेद जहान और अलीशा मेंडोंसा की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। फिल्म का नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो चलिए एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

फिर स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए परम सुंदरी फिल्म का ये गाना।

0: सचिन जिगर और विशाल मिश्रा अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में ये गीत आपने परम सुंदरी फिल्म से सुना।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: देवकी पंडित की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे संदीप नाथ और संगीतकार थे संदीप चौटा। फिल्म का नाम था साहिब बीवी और गैंगस्टर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा।

कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

दिल्ली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी रेखा भारद्वाज और साथियों की। आज है दोस्तों वर्ल्ड एनिमल डे। विश्व पशु दिवस हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की 2026 की ये थीम है, उनकी आंखों से दुनिया देखें।

इस साल की ये थीम हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलते पर्यावरण और इंसानी दखल के बीच पशु पक्षी इस दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। इनकी मदद करने के लिए विश्व पशु दिवस मनाने का यह उद्देश्य दुनिया भर के पशुओं के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी देखभाल करना आदि, इनकी मदद करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करना, बस छोटे छोटे कार्यों से उनकी सहायता की जा सकती है। जैसे पक्षियों के लिए अपने छत या बालकनी में दाना पानी रखें, गाड़ियों को संभाल कर चलाया जाए ताकि उसकी चपेट में ये ना आ जाए। यदि कोई पशु पक्षी घायल दिखे अपने आसपास तो किसी पशु संस्था या चिकित्सक से संपर्क करें। पशु पक्षियों के साथ दया करुणा और प्रेम का व्यवहार करें और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति लें। पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमसे अपेक्षा रखते हैं और हमें करना भी चाहिए। आइए संकल्प लें इस विश्व पशु दिवस पर इन बेजुबान जीवों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, येन केन प्रकारेण इनकी रक्षा करेंगे ताकि ये पशु पक्षी भी सुरक्षित जीवन जी सकें और हम भी। ये गाना आइए अब सुनते हैं। ये गाना एक था टाइगर फिल्म से है।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत आपने अभी सुना, आवाजें थी तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की, कौसर मुनीर के बोल थे, सुहेल सेन का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे अमित त्रिवेदी का संगीत था। आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी हो, समृद्ध हो, इसी कामना के साथ ही आज सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकर दास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेन।

स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

कि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958, फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी। सब कुछ सी

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग। बचपन

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन।

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 12 గంటలకు వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే ముకేష్ కుమార్. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं. हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया.
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे. रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे. डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे. भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे. इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है. अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा.
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित

0: करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सेंखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेंखो की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ नमस्कार, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मनचाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चलें हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मनचाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया, पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं। और इसी गीत की फरमाइश की अम्बाला कैंट हरियाणा से रतन लाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने। इस गीत को सुनना चाहते थे काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे। नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की ये फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदानाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता दिव्य हर्ष, राधे

पारस पूजा, रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी जी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंजारे बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखेलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का। इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गीत आपने सुना नगमा निगार हसरत जयपुरी मसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। ये फरमाइश थी ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूर मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन रौमा, अजरुद्दीन तमामुद्दीन रौमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद, ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इस गीत को सुनना चाहते थे जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल ढानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबिता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार, भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेन्द्र बाबू, अरुचि और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीत।

गीता श्रीवास्तव को आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग, और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए, भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
2: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
3: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
4: अनाम भैया, वॉलन सुनाओ ना।
3: हाँ, जरूर सुनाऊंगा रितु, अभी सुनाता हूँ।

0: पूछो ना भैया।
1: पूछो।
0: ये वायलिन तुम कहाँ से लाए?
1: ये वायलिन
2: बेटे अनाव, कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
2: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
2: इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
2: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
2: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
3: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
2: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
2: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
2: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच मुझे तुम याद आ गई माँ।
2: बेटे तुम बहुत भावुक हो।

0: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। मां उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें मां के इर्द गिर्द केंद्रित थी, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ मां थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की मां को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
1: अनाम, अनाम।
2: क्या बात है मां?
1: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
2: लेकिन माँ, वो तो मुझे जानते ही नहीं।
1: जानते हैं, जानते हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
2: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
1: नहीं, अकेले ही जाना।
2: क्यों?
1: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
2: मगर क्यों माँ?
1: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा, आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। आ गए तुम?
2: अच्छा नहीं रहा माँ।
1: क्यों?
2: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
1: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
2: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
1: क्यों?
2: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
1: ये बचपना छोड़ो नाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर पत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं।
2: होंगे मगर।
1: अनाम।
2: माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा, तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
1: अनाम, अब तुम जवान और समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
2: मुझे दुख है माँ।
0: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें, अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा, और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान मां मौजूद रहती, वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है, बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर ठीक है। बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बच्चा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा।

कुछ तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने

0: अब मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
2: आखिर क्यों?
3: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
2: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छा आदमी जरूर है अनाम।
3: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
2: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकाल कर फेंक दो।
3: बुरा मत मानो माँ, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर माँ मेरे लिए संसार का अर्थ ही माँ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माँ, तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और माँ अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं।
0: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
3: न माँ कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं?
1: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, माँ और बत्रा, बत्रा और माँ। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर माँ के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती घर आता, मां कहती खाना खा, अनाम आता खाना खाता। मां कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा। आ,
4: आ, आ अनाम खाना खा, चल घर चल, जा बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो जा,
5: चल उठ,
4: उठकर हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर, चल उठ चल, आ अनाम आ, नाटक कर
5: कर,
4: नाटक कर, अच्छा अभिनय कर, चल तू उत्सव तू हंस, खुलकर हंस, आ बाजा बजा, वायलिन बजा, बस बंद कर, अब बंद कर, चल कहना मान, आज्ञा।

0: खुश रहो, आसमान से खुलकर रो, खुलकर रो, खुलकर रो।
1: इस तरह नहीं कहा करते, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आता है, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आता है, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आता है। नहीं, अकेले ही जाना, मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा? मैं तेरे लिए कॉल मिला, मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
2: तेरे
1: के लिए कॉल
2: अनाम, अनाम। क्या हुआ बेटे, क्या तुम डर गए थे? सपनों डरो मत बेटा, डरो मत।
3: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना नाम बजाओ।
0: बस रितु अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी? पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया, मैं चलती हूँ।
2: अनाम, ये वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
2: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
2: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे, मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
2: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
2: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
3: अनाम की मां अब मिसेस बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
2: अनाम, दिन भर से कहाँ गायब थे?
0: बाहर था।
2: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे?
0: शहर में घूम रहा था।
2: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारागर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो माँ।
2: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
2: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
2: कहाँ जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
2: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
2: ठीक है, जाओ।
0: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है।

0: और एक संसार था माँ का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मूर्छित। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
2: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूँ, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़कर चला गया। कल रात को यह नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए नाम को यहां से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है। मैं बेचैन हूं। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली, पास हो गया है।
2: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट, घंटे, पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन ऊब, उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष, पल पल सदियों की तरह कटा। मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला, है ना आश्चर्य की बात।
3: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल, बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
3: पता नहीं कौन मेरे अंदर मुझे आवाज देता है।
0: मिस्टर अनाम,
3: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। 2-1 बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे?
1: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा। मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
2: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
1: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
3: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
0: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
4: कहाँ है उत्तर?
0: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है?

0: उत्तर
1: कहाँ है उत्तर
2: कहाँ है उत्तर
1: अनाम भैया
0: हाँ रितु
1: वायलिन सुनाओ ना
0: रितु आज समुद्र के किनारे चलते हैं वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगी है ना
1: हाँ हाँ चलो

सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।

0: सुनते हैं अनाम समुद्र के किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान हैं और वो भी उसी के साथ है।
1: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के माँ बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है।
2: अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।

प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे 2 दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

वायलिन वादक नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने।

0: ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
5: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
5: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
5: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
5: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था, उन्होंने वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह,
5: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार, तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
5: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
5: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप।

0: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
1: और उसमें खेलना और
0: कुछ नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ नहीं, 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 1/2 घंटा ब्रेक, खाओ पियो फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होकर प्रैक्टिस करता था।
1: ओहो,
0: बैठना भी नहीं, खड़े होके, वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं। अगर पांव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को मां कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पांव हिल गया।
1: ओहो,
0: तो ये तपस्या होती है
1: जी
0: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
1: बिल्कुल,
0: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
1: क्या बात है,
0: वो उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
1: वाह,
0: उसकी साधना
1: है। बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
0: परमेश्वर। तो यहां से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया नौशाद साहब के लिए।
1: जी जी,
0: मुझे फिल्म याद नहीं
1: जी,
0: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
1: बड़ी बात होती है,
0: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू कवाल जो थे उन्होंने
1: जी,
0: दी
1: जी।
0: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहां पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
1: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
0: तमाम
1: प्रदेशों में,
0: कोई भी भाषा हो, अगर फिल्म बनी है
1: जी
0: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिकटर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
1: साउथ हो,
0: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है।
1: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
0: इतना काम।
1: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
0: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
1: वाह वाह,
0: और 17,000 रूपये का घर था।
1: क्या बात है।
0: तो पहला घर अपना
1: किस इलाके में था?
0: खार में।
1: जी जी,
0: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
1: जी।
0: तो वो पहला घर था 17,000 रूपये का। 17,000 रूपये में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हजार रूपये कर्जा था।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था।
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
1: काम तो कर ही रहे थे।
0: तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए
1: जी।
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी।
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया
1: जी।
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया
1: जी।
0: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टरी है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक डायरेक्टरी,
0: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी,
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे
1: जी। ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का, जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए।

0: जी बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, सी रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगल जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है।
1: जी
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे, तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आर डी बर्मन के यहाँ, एच डी बर्मन साहब के यहाँ,
1: जी
0: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक एक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे।
1: नोटेशन
0: लिखना, टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले, तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशन
0: और उसकी नॉलेज होना,
1: जी
0: वो बहुत जरूरी है।
1: और वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो में,
0: जी
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी,
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रोबेबली 99% यही करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है।
1: जी
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन जी आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो,
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज द सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके साथ, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहाँ पे।
1: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक ओमी।
0: हाँ, सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसपे सोनिक साहब। और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो ब्लाइंड थे
1: जी
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: वाह।
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं वह लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था।
1: जी,
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था।
1: हाँ।
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा, राज क्या था? तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, 1.5 मिनट का पीस था। मुझे आज भी याद है, बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो।
1: गजब।
0: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
1: ये मेमोरी सोनी जी की, मेमोरी
0: क्योंकि ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा। तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया. एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी. मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक. सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा. सुना ये कहाँ पे आ रहा है? जी यहाँ पे आ रहा है. अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज के म्यूजिक कैसा लगेगा वहां. ओके, टेक करो.
1: क्या बात है.
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी,
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया है? नौशाद साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन जी. लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं.
1: जी जी जी.
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए. सिंगर्स का तो नाम आता है, पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता. हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर सो, वो अलग बात है. अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने गाना बनाया.
1: जी,
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया. मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता.
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का
1: जी,
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया.
1: अच्छा.
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ.
1: ओके.
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, या फ्लूट या सरोद या जो भी है, जो भी है.
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
0: ये मेरी डिसाइड है
1: जी,
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है. और उसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ. जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा. अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
1: जी,
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी. म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर.
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, या शाम होने आई में
0: जी, जी.
1: हॉर्न की आवाज आती है.

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी।
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ है
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के
0: नए सबके साथ और सबके साथ, बसंत साहब के साथ
1: जी।
0: फिर पार्टी जी थे जिन्होंने काम किया, कल्याण जी के साथ, बासु मुरारी आरडी बर्मन के साथ काम किया, एसडी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी,
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भिजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मीनारायण प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम
0: से भी उन्होंने काम किया, क्या काम किया उन्होंने एज ए अरेंजर। उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया, तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी जी,
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था।
1: हाँ।
0: मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था, 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम उनके साथ बजाता था।

0: एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनके पास। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे। जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ के आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी,
0: 500 मीटर दूर थे। मैं यहाँ, मैं भी कार में था, तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे, बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ।

0: आके जाइए आप, प्लीज बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मेरे को क्या हुआ कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं।
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया।
1: जी जी।
0: तो बोलते ये तो ठीक है। तो पहला म्यूजिक सुनाओ, फर्स्ट म्यूजिक सुनाया। बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया। उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम चार बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के हैं।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना, लेकिन ये धनी राम जी के चार नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये चार नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया। मैं कहा ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
0: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है,
1: जी जी,
0: सबसे बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
1: और ये कॉपी नहीं कर रहे, इसके लिए परेशान
0: किसी
1: रहे।
0: की कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो चार बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया दूसरे दिन रिकॉर्डिंग। कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं, लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की
0: ईमानदारी
1: बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया है
0: जी।
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो एज ए अरेंजमेंट के लिए बुलाया था उन्होंने।
1: अच्छा।
0: लेकिन हो नहीं सका
1: जी, जी। सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे
1: जी।
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी डैडी,
1: मोपेट जी,
0: मोपेट डैडी ने 500 रूपये की या 450 रूपये की मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली।
1: हाँ।
0: हेराल्ड गाड़ी थी।
1: हेराल्ड
0: जो से निकल गई तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मैंने कहा, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना
1: गजब।
0: तो मुझे रोका। मैंने कहा अन्ना आप कहाँ? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहा बाइक में जा रहे? मैं कहता अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है
1: जी,
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप
1: जी जी,
0: आशीर्वाद आपको लेना पड़ता है
1: जी,
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आरडी बर्मन, एसडी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी,
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है,
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया
1: जी, और लगातार साथ रहा,
0: लगातार साथ रहा, जब तक वो नहीं गए
1: जी,
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ
1: जी जी जी।
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की पर पंचम की बात रह गई है और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, जी। कुछ यादें बांटी है।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो हो वो तो बहुत ही करामती बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन के साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे 9:30 बजे। तो 9:15 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा काम, चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो होता है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
0: मनोहरी दादा
1: की फ्लूट हो गए,
0: सेक्सोफोन
1: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे
0: जी,
1: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और 9 रत्न कौन थे
0: जी?
1: मनोहरी जी
0: 1,
1: बासु जी
0: 2,
1: के भूपी जी
0: 3,
1: उसके बाद भानु,
0: हाँ
1: 4, मारुति
0: 5,
1: देवीचंद
0: 6,
1: अमरुत
0: 7,
1: होमी मुल्ला
0: 8
1: और 1 चंद्रकांत।
0: 9 गजब गजब।
1: ये 9 लोग उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे।
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे।
1: और इसमें कई लोग तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना,
0: हाँ,
1: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: हाँ, चंद्रकांत हो गया,
0: पूरी टोली का
1: काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा आता नहीं था उनके रिहर्सल रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं,
0: वाह वाह वाह,
1: खाना खाते हैं।
0: ऐसी सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।
1: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर।
0: क्या बात है?
1: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर।

0: के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था, मैं केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था
0: जी,
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ चार पांच महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया था,
1: एक जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो एक पीछे से की वायलिन वाले की गलती हो गई और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हो तो मैं खड़ा हो गया। पंचम जी मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ केबीएन, आशा जी का गलती हुई थी केबीएन, गोपी जी की गलती हुई थी केबीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस। अरे उत्तम आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था।
0: क्या बात है,
1: ही इज लाइक ए फ्रेंड एंड आई एम सॉरी उत्तम।
0: वाह,
1: फिर मैंने कहा केबीएन। सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े, वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
0: जी जी जी।
1: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा, फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
0: जी जी। आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
1: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर।
0: हाँ।
1: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
0: जलपरी वाला
1: वायलिन सोलो का पीस था।
0: अच्छा,
1: सागर फिल्म
0: जी।
1: तो जो वो कमलासन बजाता है।
0: अच्छा अच्छा, वो जी।
1: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है।
0: हाँ।
1: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
0: जी जी जी।
1: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये चलो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे,
0: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
1: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते
0: जी,
1: इतना भी मारोगे टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है।
0: हाँ।
1: ऐसे नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे
0: जी,
1: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई, ये उत्तम ये यहां से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस। तो ठीक है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू ट्रंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे
0: स्नैप आ जाए,
1: तू हाथ से करना
0: जी,
1: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है
0: जी,
1: अभी ए,
0: हाँ
1: ये साउंड है
0: जी,
1: ये चाहिए, तार टूट गई।
0: हाँ।
1: तो की दो तीन रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
0: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
1: नहीं नहीं, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है। तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं। तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार। बोलता है उत्तम हो जाता है यार।

0: काम करते रहते ना, हो जाता है वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं इन्वर्टर बना तब मुझे समझ में आया, ओ
1: काम करते रहने से हो जाता है। ये जो अजीब सा गाना था ये कौन सा था?
0: नहीं याद नहीं,
1: वो याद नहीं। अच्छा।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
3: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
5: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
6: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
7: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
8: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నీలంలో సమయం 5 గంటలకు వస్తుంది. తెలుగులో వార్తల ముఖ్యాంశాలు వింటారు.

0: डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि मंशियात से दूर रहने वाली सेहतमंद नौजवान नस्ल ही 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। गुजरात में मुनाक़द होने वाले दो रोज़ा चिंतन शिविर वर्कशॉप में शिरकत के लिए रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की क़ियादत में वफद आज वडोदरा पहुँच गया। और हैदराबाद के महकुमे मौसमियात ने बताया है कि रियासत में आइंदा 3 दिन बाद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटियां कायम की जाएं तो किसान मजबूत होंगे और किसान मजबूत होंगे तो गांव, तेलंगाना और मुल्क भी मजबूत होगा। तूपरान में अमूल के पहले जदीद तरीन डेयरी प्लांट साबर डेयरी तेलंगाना प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजा की तकरीब से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में भी कोऑपरेटिव निज़ाम को एक तहरीक के तौर पर फ़रोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफ़ेद इनकलाब 2.0 में तेलंगाना को अहम किरदार अदा करना चाहिए। इस स्कीम के तहत 2029 तक मुल्क भर में 75,000 नई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ कायम करने का हदफ है, जबकि तेलंगाना में 1,525 सोसाइटियां कायम करने का मंसूबा है। तकरीबन 400 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर होने वाले इस डेयरी प्लांट को 18 माह में मुकम्मल करने का मंसूबा है। इससे खवातीन और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: దాదాపు 400 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ఈరోజు అమూల్ బ్రాండ్కు సంబంధించినటువంటి అత్యంత ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఇక్కడ ఈ డైరీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు కాబోతుందన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. రాబోయేటువంటి 18 నెలల్లో ఈ యొక్క ప్లాంట్ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యువతకు, మహిళలకు మరి ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరుస్తూ ఈ ప్లాంట్ ఉత్పత్తి కాబోతుందన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తాం.
0: इस मौके पर रियासती वज़रा विवेक वेंकट स्वामी और डी श्रीधर बाबू, रुकने पार्लियामेंट एम रघुनंदन राव, कंपनी के चेयरमैन और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि मंशियात से दूर रहने वाली सेहतमंद नौजवान नस्ल ही 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। उन्होंने हैदराबाद के चार मीनार पर मई भारत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम मुनाक़दा नशा मुक्त युवा वाकथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कौमी खिदमत स्कीम के ताउन से मुनाक़दा ये वाकथन चार मीनार से गवर्नमेंट सिटी कॉलेज तक निकाली गई। वाकथन में नौजवानों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की और इज्तिमाई जिम्मेदारी और बेदारी का मजबूत पैगाम दिया। मई भारत तेलंगाना के रियासती डायरेक्टर अन्वेश चिंतला ने नौजवानों से अपील की है कि वो नौशा आवर अशिया से दूर रहें। NCB हैदराबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल ने नौजवानों को जिम्मेदाराना फैसला करने का मशवरा दिया। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की क़ियादत में एक वफद आज गुजरात के वडोदरा को पहुंच गया है। एकता नगर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के करीब मरकजी वजीर नितिन गडकरी की सदारत में दो रोज़ा चिंतन शिविर वर्कशॉप मुनक़द होगी। कल और परसों होने वाली इस वर्कशॉप में PM गति शक्ति के तहत बुनियादी ढांचे के मनसूबों में मरकज़ और रियासतों के दरमियान तालमेल के उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मुल्क की तमाम रियासतों के रोड्स एंड बिल्डिंग्स के वज़रा इस वर्कशॉप में शिरकत करेंगे। इस मौके पर कोमट रेड्डी मरकजी वजीर नितिन गडकरी के साथ रीजनल रिंग रोड NH-65 की तौसी, LB नगर डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर और भारत फ्यूचर सिटी से अमरावती ग्रीन फील्ड हाईवे समेत तेलंगाना से मुताल्लुक मुख्तलिफ अहम मनसूबों पर खसूसी तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत में दस्तियाब वसाइल का मौसर इस्तेमाल करते हुए सरकारी आमदनी में इजाफे के लिए जामे लाहे अमल तैयार किया जाए। उन्होंने कल शाम सेक्रेटरेट में वसाइल को मुतहरिक करने के मौजू पर आला सतही जायजा अजलास मुनाक़द किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी की कदर में इजाफा करने और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने के इकदाम किए जाएँ। उन्होंने सियाहत के शोबे में निजी शराकतदारी को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी इकदाम में तेज़ी लाने की भी हिदायत दी। मारूफ फिल्म डायरेक्टर सिंगीथम श्रीनिवासा राव उमर रसीदगी से मुताल्लुक सेहत के मसाइल के बाद चेन्नई के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां गुज़िश्ता रात उन्होंने आखिरी सांस ली। इनकी उम्र 95 बरस थी। श्रीनिवासा राव ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी ज़ुबानों में 60 से ज़ायद फिल्मों की हिदायतकारी की। तख्लीकी तजुर्बात को अहमियत देने वाले सिंगीथम ने 94 बरस की उम्र में संग گیتم فلم کی ہدایت کاری بھی کی تھی۔ طویل فلمی عرصے کے دوران انہوں نے بطور ہدایت کار، مصنف اور موسیقی سے گہری دلچسپی رکھنے والے تخلیقی فنکار کے طور پر

0: छोटी और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास में के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि यह क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. माता पिता और बच्चों का रिश्ता जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बन सकता है। पॉजिटिव सकारात्मक पेरेंटिंग तकनीक बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य और नीति नियम के साथ उनका विकास हो सकता है, इस तरह से काम करती है और हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और यह जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में यह वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह

दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में यह वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह अगर माता पिता सिखाते हैं कि कैसे एक मालिक की तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने और उसे पोषण देने में सक्षम बने, तो उनका गार्डन सुगंधित हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग की ओर निर्देश करते हैं। जब माता पिता प्रभावी पेरेंटिंग का कौशल विकसित करते हैं, तो वे पीढ़ी अंतराल यानी जेनरेशन गैप को मिटाने के सक्षम होते हैं। जब पेरेंट्स इस बात को समझने लगते हैं किन चीजों में मर्यादा रखी जाए, कहां प्रोत्साहित किया जाए और कहां अंकुश रखा जाए, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बाल्य और किशोर अवस्था के दोनों वर्गों अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। इस हेतु से शुद्ध प्रेम और समता के साथ उनका कैसे विकास किया जाए, ये मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नैतिक मूल्यों, अच्छे शिष्टाचार और पॉजिटिव पेरेंटिंग संबंधित उन्होंने उत्कृष्ट समाधान दिए हैं, जो युवावस्था के दौरान भी काम आते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए आज के समय अनुसार गाइडेंस, अपने बच्चों की संभाल कैसे करें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी रिलेशनशिप से बनेंगे बच्चों का हेल्थ। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, इसीलिए सबसे अच्छा स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल से ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी सीखेंगे। तो हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानो तो बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण उसे अच्छे स्कूल में भेजने से ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर सभी स्कूल एक जैसे होते हैं और अपने हर छात्र पर बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता उनका होमवर्क करने में मदद करते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं और बच्चों के सभी स्कूल इवेंट्स अटेंड करते हैं, उनके बच्चे दूसरों बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा और जरूरी बंधन है। ये रिश्ता बच्चों की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार और पसंद की नींव डालती है। यही से उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास होता है। जीवन में दूसरे लोगों से भी अपना रिश्ता अच्छा बनता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू रखना, बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और भाषा का विकास होना, बच्चे का आशावादी और आत्मविश्वास से पूर्ण होना, बेहतर सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस रहना। आप चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़े, तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदल दें। बच्चे की उम्र कुछ भी हो, उससे हमेशा प्यार से बात करें और गर्मजोशी दिखाएं। उनको बातों बातों में प्यार से ये समझाएं कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं। बच्चा जो कुछ भी कहे, उसे ध्यान से सुने और उसके प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी दिखाए। कोई भी समस्या हो, उसे हल करने में उसकी मदद करें। जब आप अपने बच्चों के साथ कोई भी समस्या को हल करेंगे, तो वह आपको देखकर सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल हालात में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उसके करीब आ सकते हैं और उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039।

9 7039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com.

पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे जरूरी है और अच्छा बंधन होता है। यह रिश्ता बच्चों के व्यवहार का पसंद और बच्चों की पर्सनालिटी पर असर डालता है। यही से बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हो तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और भाषा का विकास होना, बच्चों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना और आशावादी होना, मुश्किल वक्त में और परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, बेहतर एकेडमिक और सोशल स्किल्स होना। तो दोस्तों, ये थी बेस्ट पेरेंटिंग के कुछ असर अपने बच्चों पर। होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल दोस पेरेंट्स। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम ऑफ लम्हे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आरजे चेतन से। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: तीन लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित किए। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के जिमनी चुनाव की मुहिम आज खत्म हो गई। मंगल को इन 6 सीटों के लिए पोलिंग कराई जाएगी और वोटों की गिनती जुमा को की जाएगी। असेंबली हलकों की पोलिंग तमिलनाडु में मधुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी में थट्टन चावड़ी और मगरबी बंगाल में रेजी नगर नीज नंदीग्राम में कराई जाएगी। आसाम में पोलिंग नावगांव लोकसभा हलके में कराई जाएगी। ये असेंबली सीटें मौजूदा कानून साज अरकान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की वजह से खाली हो गई थीं, जबकि नौगांव लोकसभा सीट कांग्रेस रहनुमा प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। इसी दौरान बीजेपी ने दिनेश आर्या को उत्तराखंड में राज्यसभा के 2 साल में 1 बार होने वाले आइंदा इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी ने रुक्मिणी मलिक का नाम मगरबी बंगाल में राज्यसभा के जिमनी चुनाव के अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नीज मगरबी बंगाल में जिमनी पोलिंग इस महीने की 16 तारीख को कराई जाएगी। अदादोशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने आज कहा है कि भारत की इकतसादी मजबूती, जिसे कारपोरेट की जानिब से पुख्ता कारकर्दगी और मुस्तकिल सरमायाकारी की मदद हासिल है, अब मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी एजेंसियों के भारत की तरक्की से मुतालिक तखमीनों से ऊंचाई की तरफ बढ़ती हुई जाहिर हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य इकतसादी कॉन्क्लेव से अलग नामा निगारों से बात करते हुए जनाब गर्ग ने कहा कि भारतीय मईशत ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाई में 7.8% शरह तरक्की हासिल करने के बाद अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भदोही जिला अब संत रविदास नगर भदोही के तौर पर जाना जाएगा। भदोही में मुनाकिदा आज एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि नए नाम से कुरून उस्ता के साधु संत और समाजी मुसलह संत रविदास की जिले से वाबस्तगी का इजहार होता है। इस मौके पर वजीर आला ने 1,340 करोड़ रूपये के 112 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। भारत और कनाडा कल से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकतदारी के अपने मुजव्वजा मुआहदे CEPA के बारे में 5वीं दौर की मुदाकरात शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तजारती मुआहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरातों की क्यादत में ये 5 रोजा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़िश्ता दौर की बातचीत नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी, जिसके तहत अफसरान ने कतई मुआहदे की जानिब तेज तर पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस साल मार्च में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हममनसब मार्क कार्नी ने तय किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान CEPA के मुजाकरात साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान तवानाई और अहम मैदानियात के शोबों में 2 तरफा तालमेल में गहराई लाने से इतफाक किया था। अशिया के शोबे में भारत कनाडा की 2 तरफा तजारत 2024-25 के दौरान 8.66 अरब अमरीकी डॉलर थी, जबकि इससे मुल्क के लिए भारत की बरामदात 4.22 अरब अमरीकी डॉलर थी। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुरमुज उस वक्त तक दोबारा नहीं खोली जाएगी जब तक अमरीका उन 7 शर्तों को पूरा नहीं कर देता जो जून के एक अबूरी मुआहदे में पेश की गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने आज पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने पर ईरान का मौकिफ पूरी तरह वाज़ह और मुसम्मम है। उन्होंने कहा है कि अबनाए हुरमुज को दोबारा उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं हो जाएंगी। ये शर्तें इस्लामाबाद मुफाहमतनामे पर मबनी हैं। इसके अलावा ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रामीनिया ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ अपनी हालिया जंग के बाद अपने मिजाइलों की तादाद में इजाफा करेगा। एक खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तनाजे से ईरान की यह जरूरत उजागर हो गई है कि वो तवील दूरी की मिजाइल तैयार करे और मुल्क ने इस तरह के इकदामात शुरू कर दिए हैं। स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमिलिन भारत के 3 रोजा दौरे के लिए कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। वह आला सतही वफ्द, सीनियर सरकारी अफसरान और कारोबारी लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम मोदी और सदर परमिलिन मुख्तलिफ मामलात समेत 2 तरफा ताउन में पेशरफ्त का जायजा लेने

0: के लिए बाहमी बातचीत करेंगे। जापान के आइची नागोया में मुनाकिदा शानदार तकरीब के साथ एशियन गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए। इस दौरान 43 खेलों के लिए 2 हफ्तों से ज्यादा जारी रहने वाले सनसनीखेज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इख्तितामी प्रोग्राम में रवायती तौर पर खिलाड़ियों की परेड, एशियन गेम्स के परचम को उतारने और 2030 के मेजबान शहर दोहा को बाजाब्ता तौर पर मेजबानी सौंपने की तकरीब शामिल थी। एशियन गेम्स की अलामत समझे जाने वाली मशाल और परचम कतर के नुमाइंदों के हवाले किए गए, जिसके साथ अगले एशियाई खेलों की मेजबानी की बाजाबता तौर पर मुंतकली अमल में आई। इख्तितामी तकरीब में भारतीय तिरंगा उठाने का एजाज शूटिंग की उभरती हुई भारतीय खातून खिलाड़ी नीरो ढांडा को हासिल हुआ। सोने के 2 तमगे जीतने वाली नीरो ने इस काबिले फख्र लम्हे में भारतीय दस्ते की कयादत की। भारत मजमू तमगों की फेहरिस्त में चीन, जापान और जनूबी कोरिया के बाद चौथे मकाम पर रहा। भारतीय दस्ता 85 तमगों के साथ वतन वापस लौटा, जिनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। ये एशियन गेम्स की तारीख में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तमगों की तादाद है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3 लाख से ज्यादा मकानात सुपुर्द किए, जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपए है। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहले आदमाइशी हाउसिंग प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी चुनाव की मुहिम अपने अख्तितम को पहुंची। वोटिंग मंगल को कराई जाएगी और एशियन गेम्स 2026 जापान में जगमगाती हुई तकरीब के दौरान अपने अख्तितम को पहुंचे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 9 గంటలు దాటి 30 నిమిషాలు. ఆకాశవాణి ముంబై నుండి వివిధ భారతి ప్రసారాలు రిలే వింటారు.
2: వివిధ భారతి కే పాస్ హై బేమిసాల్ హస్తియో కా అన్మోల్ ఖజానా.
3: కహానీ కిసి సీన్ కే రిహర్సల్ చల్ రహి థీ. మే భీ టైమ్ పాస్ కర్నే కే ఇరాదే సే ఖడా హో గయా.
2: జానే మానే చరిత్ర అభినేతా జీవన్ कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
3: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकर दास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेंद्र।

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

0: शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिल उठते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।
1: लगे रे जाने क्या हो अब।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है, कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है, और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हरियाणा के गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958, फिल्म यहूदी।

0: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म अनाड़ी।
1: सब कुछ सीख

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।